आजू चाहत कर तू जिरे जो गाने दो दो तो ग्रेमी तुगु पस मारम जलल इसम लसीले द कारण मस निमान की ने बकोर से सुरसा द कर के जिने कर मकोर बरुं कर जिने जो गाना दो दो मुंडा कोजी तर्ज दो बेटिंग कर पाज एम्बेर जे तुरम बतर सी सा द कर के जिने कर आगे तुकुम पाले मा कोडने ल मत तो ने जिने मत चे कौ क्या लु कर देगरा गर का रास्ते रोसो ग्रेमी तर्ज दो बेटिंग बेर जे तुने बतर सी सा द कर के जिने कर मकोर बरुं कर जिने जो गाना दो दो मुंडा तर्ज दो बेटिंग बिसी दी को तर्ज दो बेटिंग बिसी दी बेर जे सी मा तोरा कारसिया कोजी उतला बेर जे सी मा चे तोदा मा कोंदा कोलम काकन कोदुरु amuta gasara technicien lam jimtara jo ndak me ko kula jirma dan du balum telum gais ko kanje kila mi atelum gile deneje ta kinga saint enoch le caméléon pag de tar d'accord ngana sigendo balindo 1009 septembre